हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 2 जुलाई 2026। सुबह के 5:59 होने को ही हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6 बजने को ही कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।

कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा

में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई।

ये समस्त संसार ईश्वर की देन है। सुख दुख हानि लाभ क्रोध मोह लोभ जैसी माया भी उसी ईश्वर की देन है। भक्ति

आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण झरोखा के अंतर्गत सुबह 6:35 से श्री रामचरित मानस सुन सकेंगे। आज सुनिए 237वां भाग। संगीत सरिता में श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। दूसरी कड़ी सुनिएगा आज। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोणु मजुमदार। 7 बजे से भूले बिसरे गीत सुबह 7:00।

0: सारंगी सबसे प्राचीन वाद्य माना जाता है और रावण हत्ता के रूप में बजता था क्योंकि रामायण काल में रावण उसको बजाते थे। और शास्त्रीय संगीत में बांसुरी का जो स्थान है वो नहीं था। लोग सोचते थे ये तो बस छोटी छोटी बंसी है, ये नुमाइश में बजेगा और लोकवाद्य कोई भाटियाली धुन या कजरी बनारस की बजेगी और या तो फिर आदिवासी लोग बजाएंगे
1: जी।
0: तो इसको शास्त्रीय संगीत में लाने का श्रेय स्वर्गीय पंडित पन्नालाल घोष जी को जाता है।
1: जी जी, जी।
0: संक्षिप्त में अगर मैं कहूं तो उनका उम्र बहुत कम था, मेरे जन्म से पहले वो गुजर गए 1960 में। तो उन्होंने ये बड़ी बांसुरी जो आप देख रहे हैं
1: जी जी,
0: जिसमें मैंने पिछले एपिसोड में मैंने खाली हाथ बजाई थी
1: जी,
0: इस बांसुरी का निर्माण उन्होंने किया।
1: क्या
0: और सा कैसे बजेगा
1: हाँ।
0: इस कंसेप्ट, क्योंकि लोक संगीत में तो क्या है कि चार छेद ओपन करके भी बजा दीजिए, पांच छेद भी खुला रहे तो क्या नुकसान है, कोई साइंस नहीं है ना उसमें
1: जी जी।
0: उसमें सिर्फ आत्मा है। जब वो राग रागिनी में आ जाता है तो उसमें साइंस भी आ जाता है, विज्ञान आ जाता है,
1: सुर आ जाता है फिर
0: जी,
1: सुरों की संख्या
0: जी। तो उन्होंने तीन होल बंद रखना, तीन खोलना, ये सा दे दिया हमको।
1: अच्छा,
0: इतनी क्या बड़ी उनकी, और ये जो छोटी उंगली है उससे तीव्र मध्यम बजाने की कला भी, इसीलिए जो पन्ना बाबू को फॉलो करते हैं वो सेवन होल टेक्निक बजाते हैं और जो हरिप्रसाद जी के गुरु भोलानाथ जी की टेक्निक से बजाते हैं वो लोग छह होल से बजाते हैं।
1: वाह क्या बात है।
0: और फिर उसके बाद पन्ना बाबू और रघुनाथ सेठ जी को ये भी श्रेय जाता है कि थंब के नीचे एक होल लगाए ताकि सांस से पातक बिर देखे, मैं बजा के सुना रहा हूँ
1: जी।

0: अब मंद्र सप्तक के लिए मैंने ये शंख बांसुरी बनाई
1: जी जी,
0: जो अब पूरे संसार में पॉपुलर है
1: जी जी,
0: और हरिप्रसाद जी के गुरु भोलानाथ जी की टेक्निक से बजाते हैं, वो लोग 6 होल से बजाते हैं।
1: वाह क्या बात है।
0: और फिर उसके बाद पन्ना बाबू और रघुनाथ सेठ जी को ये भी श्रेय जाता है कि थंब के नीचे एक होल लगाए ताकि सांस से पातक भिड़ दे कि मैं बजा के सुना रहा हूँ
1: जी।

और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओ, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कल उपस्थित होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस कुछ ही पलों के बाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए प्रस्तुत है नमस्कार झालावाड़।

मंजिल इंसान के हौसले अजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटा दिए। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं हाजिर हूँ आपका दोस्त ओम प्रकाश। तो शुरुआत करते हैं इस नमस्कार झलावाड़ कार्यक्रम को इस सुविचार के साथ। पेड़ कभी फल नहीं खाते, नदियाँ कभी अपना पानी नहीं पीती, प्रकृति हमें सिखाती है कि दूसरों के लिए जीना ही असली जीवन है।

दूसरों के लिए जीना प्रकृति का नियम है। हम सब एक दूसरों की मदद करने के लिए ही जन्म लिया है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो,

पहाड़ों से दृढ़ निश्चय और लक्ष्य से स्थिरता न होना और नदियों से हमें समानता की शिक्षा मिलती है। चंद्रमा से हमें खराब समय और मंदी में मन को शांत रखना और चिंता से कठिन परिश्रम की शिक्षा मिलती है। ऐसे ही प्रकृति में हर किसी से कुछ न कुछ सीखना है, नशा है बस उसे इशारा करने की, उसे महसूस करने की। इसलिए प्रकृति को समझने और आपस में जुड़ने का प्रयास करें।

शक्ति, धन और प्रभाव के संदर्भ में एक नया रूप ले लिया है। खेल पत्रकारिता हर मीडिया समूह के लिए कवरेज एक अभिन्न अंग है। विश्व खेल पत्रकार दिवस खेल जगत के सदस्यों को अपने पेशेवर कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मनाया जाता है। हमें खेल को विश्व शांति के साधन के रूप में उपयोग करने और निष्पक्ष एवं तटस्थ रहने के प्रत्येक अवसर का लाभ उठाना चाहिए। विश्व खेल पत्रकार दिवस पत्रकारों के रूप में विश्व के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने का दायित्व है। एक पत्रकार न केवल खेल जगत में बल्कि समग्र रूप में विश्व में संस्कृति, शांति और अच्छे मूल्यों का योगदान दे सकता है।

0: को प्राथमिकता भी दी जाती है। लोगों को पेड़ों के महत्व, जलवायु परिवर्तन से निपटने और वनों की कटाई रोकने के लिए भी शिक्षित किया जाता है।
1: जलवायु और अर्थव्यवस्था, यह यूनेस्को का संदेश है। आज भी दुनिया की अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। 31% तेल, 27% कोयला और 25% प्राकृतिक गैस। इसके मुकाबले हाइड्रो, सौर, पवन और जैव ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोत सिर्फ 17% हैं। जीवाश्म ईंधन का संग्रह दशकों तक रहने का अनुमान है, लेकिन उनका अत्यधिक इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन को और बढ़ाएगा, इसलिए हमें जल्द ही इसे रोकना होगा। यदि हम जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित नहीं करते तो इसे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आर्थिक विकास को ऐसे बढ़ाना चाहिए कि उत्सर्जन ना बढ़े और पानी, भोजन और ऊर्जा की सुरक्षा बनी रहे। हरित प्रौद्योगिकरण का उपयोग करने से विशेषकर युवाओं के लिए कई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, महासागरों में अत्यधिक गतिशील ऊर्जा होती है जो भविष्य में हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकती हैं। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
0: श्रोताओं, अभी आपने ट्यून किया है FM 103.2 MHz पर, ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल, और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब चर्चा करते हैं शिमला समझौता की वर्षगांठ।

भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट हर वर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। 2 जुलाई 2026 को इस संधि की 54वीं वर्षगांठ है। शिमला समझौते से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु। हस्ताक्षर की तिथि 2 जुलाई 1972। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो। ये समझौता 1972 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करना और विवादों का समाधान शांतिपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से करना था, जिसमें किसी भी तीसरे पक्ष जैसे संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश न थी। नियंत्रण रेखा LOC, इसी समझौते के तहत जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC की स्थापना की गई थी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का

मित्रों, जानते हैं आज के मौसम के बारे में कुछ संदर्भ। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। पूर्वानुमान के अनुसार बादलों की आवाजाही के आसार रहेंगे। जिले में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना रहेगी।

प्रातः 8:30 पर कार्यक्रम होगा गणगौर, चर्चा होगी वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, विश्व खेल पत्रकार दिवस, शिमला समझौते की वर्षगांठ। इसमें एक भेंटवार्ता होगी, वो होगी वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संतुलन। दिन के 12 बजे आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

दिल पत्रकार दिवस शिमला समझौते की वर्षगांठ। इसमें एक भेंट वार्ता होगी, वो होगी वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संतुलन। दिन के 12 बजे आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम रहेगा युवाणी शाम 5 बजे। चर्चा का विषय है विश्व खेल पत्रकार दिवस और शिमला समझौते की वर्षगांठ। किसान साथियों का अपना कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी शाम 7 बजे। सजीव फोन इन, मानसून में फलदार वृक्षों के रोपण एवं देखभाल की आधुनिक तकनीक।

कृषक चौपाल आप सुनेंगे साइंस 7:30 पर। इसमें एक भेंट वार्ता होगी, वो होगी बरसात के मौसम में विद्युत दुर्घटनाओं से कैसे बचें। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे सब रस।

रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रिले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026। इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के मध्य ओवल लंदन में खेले जा रहे टी20 मैच की कमेंट्री का प्रसारण। ये थे हमारे आज के केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। तो मित्रों, मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से सही लेकिन मिलता जरूर है। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए आपके दोस्त को अनुमति। नमस्कार झालावाड़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। गीतकार हैं नरेंद्र शर्मा, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म प्रेम रोग। स्वर हैं सुरेश वाड़ेकर और साथियों के।

उदित नारायण और साथियों के स्वर, फिल्म गदर, आनंद बख्शी के बोल, उत्तम सिंह का संगीत, सुनते हैं गीत।

व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा

0: सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में

0: दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तरी अरब सागर गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग गुजरात कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई, शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर

FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत अदनान सामी के स्वर में।

FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत अदनान सामी के स्वर में।

की कल्पना ही न कर सका। और प्रकृति जो मानव जीवन को आधार च, इम शुद्ध व स्वच्छ वायु, शुद्ध जल मिट्टी, संतुलित जलवायु और जो जीव विविधता च, इको संरक्षण में वृक्षा की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका च। सख्याओ, तो जन जागरूकता बढ़ावा का उद्देश्य सु ही हर साल 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनायो जाओ छे। इकी शुरुआत सख्याओ 1950 में के एम मुंशी का प्रयासासु होई जी और इको मुख्य उद्देश्य चु ज्यादा सु ज्यादा वृक्षारोपण करवो तथा लोगाम जो पर्यावरण च, तो पर्यावरण के साथ ही वहाँ का संघर्ष और प्रेरणादायक कहानियाँ सुबह व समाज ही अवगत कराओ जे। सख्याओं, आज का डिजिटल युग में खेल पत्रकारिता को स्वरूप तेजी से बदल रहे जे। समाचार पत्र, रेडियो व टेलीविजन का साथ साथ डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और भी वेबसाइट का माध्यम से खेला की जानकारी लोग प्राप्त कर ले जे। पर एक साथ ही जो विश्वसनीय समाचार देवो खेल पत्रकारा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रह छे। विश्व खेल पत्रकार दिवस मनावा के साथ यो ही संदेश दे छे कि खेल की प्रगति में खिलाड़ियों के साथ साथ पत्रकारा की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रह छे। तो इस अवसर पर सभी खेल पत्रकारा का समर्पण और योगदान को अपन कतई सम्मान करनी चाहिए। और सख्याओं, एक साथ ही आज एक और विशेष दिन छ, उच्च शिमला समझौता की वर्षगांठ। सख्याओं, शिमला समझौता की वर्षगांठ 2 जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक ऐतिहासिक

0: सुखागार। सही बात है, यह चीज था बिल्कुल सही की प्रकृति में संतुलन जरूरी छ, क्योंकि आजकल आपन देखा छ हर जगह तो बाढ़ आओ छ, कभी तो कई सूखो भी पड़ा छ, चक्रवात आओ छ, मनमान महामारी आओ छ, आपदा आती रह छ। अगर पेड़ पौधा की या प्रकृति में संतुलन फेल रो छ, क्यों? क्योंकि आपन पेड़ पौधा तो काट दा छा, बड़ी बड़ी इमारता बनाओ छा, घर में बढ़िया बढ़िया फर्नीचर लगाओ छा, पेड़ पौधा काट दा छा आपन, और पेड़ पौधा आपन लगावा ही कोई ना, तो पेड़ पौधा जंगल की तो दिन ब दिन कमी आ रही छ, तो प्रकृति में संतुलन फेल रो छ, तो कहीं तो बादल फाटे छ, कई वो आपदा आओ छ, कभी महामारी आ जाओ छ, वातावरण शुद्ध रहा की वजह से। ये वजह से कम अगर आप बागवानी को तो घणो ही शौक छ।
1: या तो बहुत अच्छी बात छ कि आप पढ़ाई भी कर रहे छो, घर गृहस्थी भी संभाल रहे छो, और एक साथ ही आप बागवानी भी कर रहे छो। तो जैसा बागवानी आप घर पे ही करो छो, और भी जैसा खेत वेत पर।
0: हाँ, माँ का खेत भी छे ना, गाँव में मकान छे, खेत सब जगह में बागवानी करू छू, पेड़ पौधा लगाबा को बहुत शौक छे, वहां को ध्यान भी राखू छू।
1: तो काय काय पौधा लगा रखे छे जी भाई आपने?
0: जैसा घर में आप ये तो लगावा है, चाहे एक तो पूजा

0: अगर पेड़ पौधा की या प्रकृति में संतुलन फेल रुचु क्यों, क्योंकि आपन पेड़ पौधा तो काट दा चा, बड़ी बड़ी इमारता बनाओ चा, घर में बढ़िया बढ़िया फर्नीचर लगाओ चा, पेड़ पौधा काट दा चा अपन, और पेड़ पौधा अपन लगावा ही कोई ना, तो पेड़ पौधा जंगल की तो दिन ब दिन कमी आ रही छ, तो प्रकृति में संतुलन फेल रुचु, तो कहीं तो बादल फाटे छ, कहीं आपदा आओ छ, कभी महामारी आ जाओ छ, वातावरण शुद्ध रहा की वजह से, ये वजह से कम अगर आप।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सक्याओं अबार आपने सुनी वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संतुलन पर श्रीमती वंदना जी से भेंट वार्ता। तो देखो मान आपन कताई बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि वृक्ष आपना जीवन में कितना लाभकारी है, कई ये फल फूल तो दे ही, साथ ही औषधीय पौधा भी आपन कताई लगानी चाहिए, इससे आपनों वातावरण भी शुद्ध होगो और आपन स्वयं भी खुश रहेंगे। और सक्याओं अब चला अपन जानकारी की बात है की ओर। तो आज का कार्यक्रम में जानकारी की बात में लेकर आया जा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सखियों यह योजना भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य
0: अब भी बस वो उर्वरक वाली फसल कर कुल। वंदना जी बहुत अच्छी बात आपने बताई छ, अपनी प्रकृति को ध्यान रखता हुआ वृक्षारोपण जरूर करनी चाहिए, और वृक्षा से अपनी कितना फायदा छ देखो, एक तो अपनी मतलब स्वस्थ वातावरण मिले छ, ऑक्सीजन मिले छ, फल फूल मिले छ, तो और औषधि का रूप में भी पेड़ पौधा काम आवे छ, जैसे अपन अपना घर में नीम तुलसी जी पीपल ये लगावा।
2: यह योजना सक्या कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ावा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल छ, और ई योजना को लाभ वह परिवार ही मिले छ जो निर्धारित सरकारी पात्रता मानदंड जैसा सामाजिक आर्थिक जनगणना का आधार पर चिन्हित परिवार तथा अन्य पात्र श्रेणियां में शामिल छ। और सक्यों पात्रता की जांच आधिकारिक पोर्टल पर की जा सके छ। और ई योजना की मुख्य विशेषता है जैसे पात्र परिवार ही हर साल 5 लाख तक को कैशलेस स्वास्थ्य कवर मिले छ, और उपचार पूरा भारत में जो भी सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पताल छ वहाँ में पोर्टेबल छ, अर्थात लाभार्थी कैसे भी राज्य में ई योजना को लाभ ले सके छ। परिवार का सदस्य की संख्या आयु पर कोई सीमा कोई ना, ई योजना में अस्पताल में भर्ती हुआ को खर्च, ऑपरेशन सर्जरी दवाइयाँ एवं जांच, आईसीयू डॉक्टर की फीस और अन्य अस्पताल का जो भी संबंधी खर्चा रह छ वह मिले छ। और सख्याओं तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी योजना छ जिको आपन लाभ ले सका चा,

0: वो अपने आप में निराला मिलेगा। और ये हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए। यह आयोजन राजस्थान को राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। आइए हम सब मिलकर इस आयोजन को केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिक शक्ति और राष्ट्र प्रथम के संकल्प को का महोत्सव बनाएं।
1: कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लोक मंथन भारतीय सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इस अवसर पर लोक मंथन की वेबसाइट का लोकार्पण और एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आज समापन होगा। समापन अवसर पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होंगे। सम्मेलन में आज डिजिटल गवर्नेंस तथा उभरती प्रौद्योगिकी से जुड़े विषयों पर 3 प्लेनरी सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स तथा शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए फंडिंग नेटवर्क संचालित करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस इंटेलिजेंस के अतिरिक्त महानिदेशक प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि आरोपित रफीक खान चांद शेख महाराष्ट्र के औरंगाबाद का निवासी है। इस पर ISI के लिए काम करने और जासूसी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों तक धनराशि

0: वो अपने आप में निराला मिलेगा। और ये हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए। यह आयोजन राजस्थान को राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अधिक प्रतिष्ठा प्रदान
1: साइट और SSO पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के देवमाली गांव से VBG रामजी योजना का शुभारंभ करेंगे। जयपुर में चल रहे 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में आज केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ

एक ही विविध भारती आप दिन में कभी भी किसी भी समय सुन सकते हैं, दिन रात 24 घंटे आप विविध भारती कभी भी सुन सकते हैं हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए। तो बस जब तक जाग रहे हैं तो विविध भारती तो आपके साथ ही बनी ही रहेगी।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे

0: है जो ये करते हैं। तो आज विश्व खेल पत्रकार दिवस पर हम सभी खेल पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हैं और उनके कामों के लिए देते हैं उन्हें धन्यवाद।
1: India in deep trouble now, having lost two matches in a row.
2: अपना है दिल ये आज का।

0: ऐसे लगा हम खेल ही नहीं, पहले ही कंधे घेर दोगे फिर कैसे लड़ो।
1: जब तू इन स्विंगर डालता है तो बैट्समैन को टेलीग्राम क्यों भेज रहा है कि तू इन स्विंगर डालता है? ग्रिप छुपा।

रांझणा फिल्म का ये गीत आपने सुना सिराज उप्पल और जसविंदर सिंह की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, ए आर रहमान का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक में अब आपको सुनवा रहे हैं नीति मोहन, विशाल ददलानी, के और शंकर महादेवन की आवाजों में ये गीत, जिसे लिखा इरशाद कामिल ने, विशाल शेखर का संगीत, फिल्म हैप्पी न्यू ईयर।

स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, दिन भर में जहां भी रहिए रहिए विविध भारती के साथ, और दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: ज्योति से। दोस्तों, आपको यहां याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा।

0: 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त।

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

0: सकता था। भाषा पर तीन भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है, और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा। और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई
1: जी।
0: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज़्यादा लिखा है, और व्यंग में सबसे ज़्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं, और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है
1: जी। तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राणी जी, लेकिन व्यंग्य लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा
0: जी। एक घटना हुई थी राजनीतिक, उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी, और दो तीन राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली, और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई
1: जी।
0: कहीं ना कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं, उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा, और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था, और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया
1: जी। यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद
0: जी,
1: मिला
0: जी।
1: तो राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
0: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे,
1: क्या बात?
0: बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता
1: बहुत
0: है,
1: बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ज़्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता
1: है। बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग्य लेखन पर,
1: जी
0: और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता
1: जी
0: और गिद्धों का स्वर्णकाल,
1: जी
0: अंधे पीसे
1: जी
0: और साहित्य के शनिदेव,
1: जी
0: ये सबकी

0: हैं, अंधे पीछे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाए जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और उसका दुरुपयोग किया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है, चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे। तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने उनका संग्रह है और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है।
1: जी, जी।

0: उसमें भी हास्य है, लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है।
1: जी,
0: प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूँ जीवन के लिए, हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
1: जी,
0: आपने मीम्स की बात की है, मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यह भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीज़ें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगत, इनका साज ठीक होना चाहिए।
1: जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहाँ सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहाँ छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य ये कैसा लगता है आपको?
0: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
1: जी,
0: जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए, उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम हैं, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहाँ तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं, और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं।
1: जी,
0: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है।

0: बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है।
1: जी, तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग्य केवल एक हास्य की विधा है
0: जी
1: और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है।
0: जी
1: तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा।
0: जी, जी।
1: तो क्या पाठकों का व्यंग्य को समझने का नजरिया बदला है?
0: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूँ जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं, सीधे किसी दल किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है।
1: होना चाहिए
0: जी। मंदाकिनी जी ने, आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी

0: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूँ जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे
1: जी
0: शब्दों में शिकायत कर देते हैं,
1: जी
0: सीधे किसी दल किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है।

0: गए हैं तो आपने इंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आगे, क्या यही है? नहीं, मेरा मानना है कि जहाँ आपने दर्शन किया वहाँ का जीवन दर्शन क्या है, इस चीज़ को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है? और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। आप जब यात्रा करते हुए अपनी मूल चीज़ों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीज़ों को मिला करके मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मदुराई सिक्किम वगैरह, इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा पंचमढ़ी, इन सभी का आपने इसमें वर्णन किया है। बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी

0: उसकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनवा रहे हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की गाई ये गजल।

0: प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
1: श्रोताओं, हीरे का निर्माण होता है
0: में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओं, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम

0: से कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम का
2: फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
3: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
4: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे।

0: भला वो कैसे? आज्ञा है।
1: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
3: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा गद्दी पे बैठ कर
4: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
3: इसके पास
4: जा रहा है देवदत्त, तो कार्य उनका है।
1: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।

0: भी करेगा? भला वो कैसे? आज्ञा है।
1: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
3: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा गद्दी पे बैठ के
4: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए
3: जा
4: रहा
3: है।
1: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।

0: गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3,

0: गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3 सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
4: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
3: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
5: जी सर, उनका नाम है भास्कर आचार्य।
3: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
5: जी, मेरा नाम श्रुति है।
3: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कर आचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
6: सूर्य ग्रह है या तारा?
3: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
7: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
3: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
8: अच्छा सर।
9: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
5: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
3: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
9: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
3: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
9: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
3: शाबाश, समझ गए ना?
8: जी सर।
5: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
3: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
9: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
3: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है, जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
8: जी सर।
3: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।

0: बच्चों शाबाश, खूब पढ़ो खूब पढ़ो और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
1: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
2: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। दिन के एक बजने को ही कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के मुक्कावरीपल्ली गांव से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इधर राजस्थान में अभियान की राज्य स्तरीय शुरुआत ब्यावर जिले के देवमाली गांव से हो रही है। पंचायत समिति में हो रहे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीबीजी रामजी का शुभारंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां से जल जीवन मिशन के तहत लगभग 418 करोड़ रुपए की विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही 78 नई पेयजल टंकियों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को और आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। अलवर में अब कचरे से बिजली बनाई जाएगी। राजधानी जयपुर के बाद अलवर प्रदेश का ऐसा दूसरा शहर होगा जहां वेस्ट टू एनर्जी परियोजना के तहत कचरे से बिजली का उत्पादन होगा। अलवर नगर निगम ने इसके लिए वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। संयंत्र में रोजाना लगभग 1000 टन ठोस कचरे का उपयोग किया जाएगा। इससे शहर में एकत्रित कचरे के निस्तारण में भी सहायता मिलेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिक अब ब्रह्मांड से जुड़े शोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देंगे। संस्थान के दो वैज्ञानिकों को यूरोप की वैज्ञानिक संस्था सीईआरएन सर्न की एटलस परियोजना से जोड़ा गया है। ये परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक अनुसंधान पहलों में से एक है। इसके लिए मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इस शोध के माध्यम से वैज्ञानिक ब्रह्मांड की संरचना, सूक्ष्म कणों के गुणों और नए वैज्ञानिक सिद्धांतों की संभावनाओं का अध्ययन करेंगे। भरतपुर जिले के रायपुर गांव के पास आज एक सड़क दुर्घटना में 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई जबकि 13 अन्य घायल हो गईं। ये दुर्घटना उस समय हुई जब ये

दरअसल मौसम को लेके इतने खूबसूरत गीत हैं कि अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा भी प्ले करते चलें तो आज के कार्यक्रम का वक्त ही पूरा हो जाएगा, इसलिए कुछ गीतों को हमने छांट कर लिया है, चुनकर लिया है। अब जो गीत हमने चुना है वो तो आपको सुनवाएंगे ही, आपसे पूछेंगे फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, लेकिन एक सवाल और है। आज की इबारत में शुरुआत में एक गीत के अंतरे की कुछ पंक्तियाँ छिपी हुई हैं, आपको वो गीत पहचानना है, फिल्म का नाम बताना है और साथ ही वो अंतरा भी बताना है कि वो अंतरा असल में क्या है, उसमें से कुछ शब्द लिए हैं अंतरे के। तो अब ये गीत और बताइए फिल्म का नाम और मुख्य कलाकारों के नाम।

आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य केवल आंखों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। फूलों की मुस्कान, रजनीगंधा की भीनी सुगंध और सुहाने मौसम का यह सम्मिलित स्पर्श जीवन के उन अनमोल क्षणों का स्मरण कराता है जहां सुख किसी बड़े उत्सव में नहीं बल्कि प्रकृति की सहज छटा में छिपा होता है। जब चारों ओर सृष्टि अपने सौंदर्य का संगीत बिखेरती है तब मन भी अनायास ही भावों के सुर छेड़ देता है और जीवन एक मधुर

को हम बुला रहे हैं, बल्कि डर नहीं रही है बल्कि आने के लिए मजबूर होती जा रही है, और बारिश जल्द ही आ जाए हम तो यही दुआ करेंगे। एक और श्रोता ने बताया है कि वो आज शिमला में मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मेलोडियस सॉन्ग सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के इन संदेश

डायरी शाम का समा, ये गाना बहुत पसंद है हमारे एक और श्रोता को। मौसम आधारित गीतों में सबसे ज्यादा पसंद है ये गाना हमारे एक और श्रोता को, मौसम मौसम ये लवली मौसम। और दूसरा लोफर का आज मौसम बड़ा बेईमान है। और हमारे कुछ श्रोताओं ने दिल थाम चले गीत के बारे में बताया है कि बहुत ही रोमांटिक गाना है। एक श्रोता बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लुभाने वाला फिल्म गीत है तीसरी कसम का, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि इस गीत के बारे में केवल ये पता है कि रफ़ी साहब गा रहे हैं।

इंद्रधनुष को लेकर हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब कई देखने को मिले। इंद्रधनुष को देखना अच्छा लगता है बचपन में भी और अब भी, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और एक और श्रोता ने बताया कि मैं अमेरिका के नियाग्रा फॉल देखने गई थी, वहाँ मैंने एक ही जगह पर ही छोटे छोटे बहुत से इंद्रधनुष हर थोड़ी थोड़ी दूर पर देखे जो बहुत अजूबे से लगे। वाकई हम तो सोच रहे हैं कि क्या नज़ारा होगा वो। एक और श्रोता ने कहा है कि असल जिंदगी में मुंबई में इंद्रधनुष नहीं दिखता। आज का प्रोग्राम मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि मुंबई से बाहर जाके इंद्रधनुष देखूं। क्या बात है। एक और श्रोता ने कहा है कि इंद्रधनुष जब भी बादलों से झांकता था हम रंग गिनने लग जाते थे, शहरों में कम दिखाई देता है। मिस यू।

एक और श्रोता ने बताया कि जबलपुर का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। बरखा रानी आज सुबह से ही बरस रही हैं। सुबह सुबह छत पर जाकर सूर्य नमस्कार करने की आदत है। आज जब छत पर गए तो रिमझिम फुहारों और फुहारों के साथ फूलों का झूमना, पंछी की मधुर आवाज दिल को अजीब सुकून दे रही थी। ये मंजर हमने वीडियो में कैद कर लिया है। आज की बारिश शायद ये कहना चाह रही है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, ये पल हमें याद आएंगे, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। अच्छा, इन्होंने कुछ और गीत भी बताए हैं, क्या मौसम है चल कहीं दूर निकल जाएं। हाँ, ये भी बहुत सुंदर ही सा गीत है। एक श्रोता ने बताया कि बचपन में जब इंद्रधनुष दिख जाता था तो हम कुछ विश मांगते थे। और एक श्रोता ने कहा है कि वाह, क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने। हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का आगमन होता है तो मोबाइल लेकर छत पर चढ़ जाते हैं, रूई जैसे सुंदर सुंदर मेघों की क्लिक्स लेने के लिए। खूब सारी क्लिक्स लेते हैं लेकिन फिर वापस भागना पड़ता है भीगने के डर से, स्वयं नहीं मोबाइल के। सच में मोबाइल बचाना बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। एक और श्रोता कह रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे इंद्रधनुषों वाला एक संदेश पढ़ा था उसी से संबंधित है ये संदेश हमारी एक और श्रोता का लिखा है। ये तो हमने भी देखा क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच का नजारा ही है नियाग्रा फॉल्स पर, बड़ा ही प्यारा नजारा, हम कभी नहीं भूल सकते। वो इतना प्यारा समा, वो पल मानो हमारे दिल में सदा के लिए बस गया है। एक और श्रोता ने कहा है कि मौसम की बातें हो रही हैं तो आज सभी को गरजते बरसते बादलों का इंतजार है, लेकिन कुदरत भी और इंतजार करा रही है। इंतजार के इस वक्त के लिए इनको गीत याद आया है, कहाँ से आए बदरा, फिल्म चश्मे बदूर का गाना। और एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई, इंद्रधनुष प्रेमी इंद्रधनुष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भली भांति देख सकते हैं और अपने अपने दुनिया को मुट्ठी में भरकर खुश हो सकते हैं। भाई ये कुछ मतलब ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन देखने के साथ जो उसको एक उल्लास जुड़ा रहता है वो कैसे महसूस होगा। ये हमारे एक श्रोता ने मैसेज भेजा है कि आज कालिख वक्त एहसास और यादों के खूबसूरत ताने बाने को बुनता है। ये महज एक कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि जिंदगी के सुरीले सफर का एक जीवंत दस्तावेज है। इसमें एक ऐसे रूमानी मौसम का जिक्र है जो अपने साथ सतरंगी ख्वाब लेकर आया है, जहां अनजाने रिश्ते भी सदियों पुराने लगते हैं। जैसे जैसे ही रजनीगंधा की भीनी खुशबू हवाओं में घुलती है, जिंदगी का हर बिखरा सुर एक मुकम्मल ताल बन जाता है। ये लम्हा भले ही हमेशा न ठहरे, पर जाते जाते दिल में ताउम्र मुस्कुराने वाली एक मीठी कसक छोड़ जाता है। सच में एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार का सुहाना मौसम, सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियां प्रदान कर रही है। सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही है, मन भावन गीत तन्मयता से गुनगुना रही हैं। बिल्कुल बादल, बिजली, चंदन, पानी और सुमन सुगंध की तरह धीरे धीरे यह मस्ताना मौसम एक मीठी मीठी सी चुभन और ठंडी ठंडी सी अगन हमें अर्पित कर रहा है। सुरीले सफर में आज ऐसे ही कुछ मधुर गीत। और इन्होंने कुछ गीतों का भी जिक्र किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि शुरुआत में भेजा हुआ संदेश, इसमें से कई गाने हमारी लिस्ट से मैच हो गए। एक और श्रोता ने कहा है कि और बहारों की तो बातें हैं, और रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह। ये कुछ इन्होंने गीत लिखे हैं तो चलिए ये गीत भी शामिल हो गए। और एक और श्रोता ने कहा है कि फूल और कलियों की बातों पर इन्होंने अपने चारों तरफ उन्हें खिलते हुए महसूस किया है। अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए, इस गीत को सुनिए, बताइए फिल्म का नाम।

रात हो गई लेकिन यादों के ये चिराग जलते रहेंगे। हमारे श्रोताओं ने बताया निकाह फिल्म का ये गाना आपने सुना। महेंद्र कपूर की आवाज़, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, राज बब्बर और सलमा आगा की ये फिल्म। और सारे संदेश भेजे हैं उन फूलों के बारे में। हमारे एक श्रोता ने कहा है, रजनीगंधा तो सच में दिल से दिल की आवाज़ पहुंचाने का जरिया है। मानो हमारी गुरु स्वरूपा दीदी ने जब इतने प्यार से हमारे सत्संगी सखी के लिए रजनीगंधा फूलों का गुलदस्ता भेजा, तो नेत्रहीन हो चुकी और डायलिसिस पर चल रही सखी फूलों को पाकर खुशी से झूम उठी और रजनीगंधा फूल तुम्हारे गीत गुनगुनाने लगी। उनकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी से सारे दर्द भूल कर उनके साथ झूमने लगे। ये बदलाव पर व्यंग है जिसकी गिरफ्त में हम सभी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का दर्द झेल रहे हैं। हमारे एक और श्रोता ने कहा है, जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। और हमारे और श्रोताओं के भी संदेश हैं, लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है। एक श्रोता कह रही है कि फ्लावर वास से ज़्यादा हमको ये जो पेड़ों पर फूल अच्छे लगते हैं, पेड़ों पौधों पर अच्छे लगते हैं, क्योंकि फ्लावर वाज में ये जल्दी से मुरझा जाते हैं। हाँ, सच में मुरझा जाते हैं, लेकिन यादों की खुशबू कभी कम नहीं होती और कभी नहीं मुरझाते वो फूल जो मीठी मीठी बातों के साथ हमारे मन में यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए राजुल को इजाज़त। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।

0: प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अमर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद की धुन।

0: तो दीपा, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे तकदीरा बेगम के बारे में।
1: जी, बंगाल की रहने वाली हैं ये। और सोनाली, आप तो जानती हैं कि बंगाल राज्य अपनी पारंपरिक और उत्कृष्ट कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नक्शी कांथा, लेप कांथा, सुजनी कांथा, बेटन कांथा, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी शैलियां हैं। ये

0: माता पिता उसे परिवार से भी देख पा रख कर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं, पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते, अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं, जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं, दो परिवारों, कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी इस मामले में बहुत सोच समझकर हमें निर्णय लेना चाहिए
1: जी। अच्छा, एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती है कि मेरी एक सखी है, उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सब ने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर है और अब जहाँ वो ससुराल में गई है तो वहाँ ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करे, घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है, लेकिन फिर भी समझदारी ज्यादा बड़ों में होनी चाहिए, ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए है, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल, थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
0: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी, कि ये सब बातें कहने की है, पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपनी ज़िंदगी के उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी करना बहुत अच्छी बात है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए, यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला होती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है, क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
1: बिल्कुल, और आज के ज़माने में जहाँ इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना बहुत जरूरी आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियां, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की ले सकती है,
0: अपनी इच्छा पूरी कर सकती है,
1: अपनी इच्छा पूरी कर सकती है, न सिर्फ अपनी, वो परिवार की भी इच्छा
0: पूरी कर सकती है।
1: और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता,
0: पूरे
1: उस
0: परिवार
1: को होता है।
0: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे, हम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
1: बिल्कुल,
0: और अब गाना सुन ले
1: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
0: सुनते हैं।

0: आसमां तो झूम रहा है अभी, है ना?
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा।
1: अभी कैसे आ सकती है? अभी तो हमारी सखियां साथ में है भाई।
0: और पर नींद

0: क्या समय समय में सुनता हूँ सर मोबाइल के द्वारा, काम में भी जाता हूँ, मिस्त्री लाइन के काम करता हूँ मैं।
1: मिस्त्री लाइन का मतलब
0: तो, मकान मिस्त्री का सर।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ। और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
1: जो अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती सुनते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए पवन कुमार जी क्या सुनना चाहते हैं आज?
0: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
1: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: इसमें सर मेरे खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्नालाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश अपने भाई पन्नालाल सेन तक।
1: कहाँ रहते हैं पन्नालाल जी?
0: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंदर घर आता है अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
1: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
0: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।

0: उनका नाम है डोली, आशा जी की आवाज में, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चार नजर आए मेहताब उधर मेहताब।
1: बढ़िया गाना है, आपको सुनवा रहे हैं डोली फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बोलिए राकेश जी।
1: मेरी बात में कॉल लग गया, मेरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार, मैं पप्पू
0: नमस्कार
1: ठाकुर
0: जी,
1: कटिहार थाना जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ।
0: बोलिए पप्पू जी, कैसे हैं?
1: भैया जी अपना बताइए।
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस श्रोताओं के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग जगह
1: जी
0: से आप
1: जी
0: लोग फोन करते हैं, तो आपके
1: जी जी
0: इलाके में मौसम कैसा है? बारिश पड़ रही है?
1: जी सर, आज कितने दिनों के बाद आज बारिश हुई है सुबह में। और मैं शहरी इलाका नहीं है, गांव का इलाका है हमारा, एक छोटा सा जिला है।
0: जी जी पप्पू जी, वहाँ गांव में आप क्या काम करते हैं बताइए।
1: गांव में सर मैं तो अभी बाहर गांव में काम करता था, अभी घर पे आया, एक साल हो गया हमको। मैं दुबई, कतर और कांगो, एक अफ्रीका जगह है ना, वहाँ
0: जी
1: पे मैं काम किया है,
0: जी जी
1: मैकेनिक का काम मैं करता हूँ सर।
0: अच्छा, तो फिर अब पिछले
1: जी
0: साल भर से आप घर में हैं, तो यहीं
1: जी
0: अपना
1: जी
0: कुछ नया काम धंधा शुरू करने का इरादा है?
1: जी जी हमारा एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहाँ पे। मेरा एक सपना था सर कि मैं कभी वेद भारती में मेरा कॉल लग जाए, हेलो फरमाइश में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था।
0: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया
1: मैं
0: आपका।
1: बहुत खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2005-06 से जब रेडियो पे मैं सुनता था, हमारे बड़े पापा के पास एक फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था छोटा वाला, उसको हम शॉर्ट वेव पे उसको सुना करते थे। उस समय से मैं वेद भारती को बहुत चाहता हूँ सर, बहुत चाहता हूँ, भी सुनता हूँ, अभी मोबाइल पे सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपने?
1: जी जी न्यूज एनआईआर वाला।
0: बहुत बढ़िया है।
1: कोई भी ऐसा फरमाइश नहीं गया हो जो मैं नहीं सुना हूँ, ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्डेड में मैं सुन लेता हूँ।

0: बताइए पप्पू जी, आज के लिए आपने कौन सा गाना चुना है?
1: फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, मनोज कुमार सर पे फरमाया गया है। वो गाना है पत्थर के सनम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना। रफी साहब

0: 20 जून से लेकर जो है फुल मंथ जुलाई तक रहता है। 39 दिनों को हम कश्मीरी में बहरात बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: बहरात के समय यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, और वैसे ही यहाँ पे 21 दिसंबर से लेकर फुल मंथ जनवरी तक 40 दिनों का एक और समय होता है, उसको

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा गर्वबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट करें, हमारा नंबर है 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर नोट करें 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया जयंत पात्रिकर के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: वार्ता राधा शर्मा से अदिति शर्मा की बातचीत।
1: दोस्तों, आज हमारे साथ भेंट वार्ता के लिए उपस्थित हैं एक शिक्षिका, समाज सेविका और बहुत ही मधुर आवाज की धनी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो खास तौर पर महिलाओं के लिए प्रेरणा है, राधा शर्मा जी। जी हाँ दोस्तों, आइए हम इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में।

0: बच्चों को प्रार्थना सभा में प्रार्थना सिखाना करवाना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनको देशभक्ति गीत तैयार
1: जी
0: करवाना बहुत
1: जी
0: अच्छा लगता है। जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त आती है तो उनको गीत, देशभक्ति गीत वगैरह, तो ये सभी में तैयार करवाना, और बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं।
1: जी तो राधा जी, जो संगीत के क्षेत्र में रुचि है वो आपकी कब से रही है, और इसमें आपका जो मार्गदर्शन है वो किसने किया?
0: ये संगीत की रुचि मुझे मेरे भाई से मिली है। बचपन से ही मैंने देखा है कि मेरे भाई को भी भजन का बहुत शौक था,
1: जी,
0: तो उनके साथ साथ मैं भी भजन कीर्तन में जाया करती थी। तो बस जब से मेरी रुचि है, और अधिकतर मुझे भजन कीर्तन बहुत पसंद है, तो मेरी भाई से और मेरी भाभी से, इनसे मुझे प्रेरणा मिली है। वो भी संगीत में बहुत रुचि रखती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भजन कीर्तन करना।
1: जी बहुत अच्छी बात है राधा जी आप बता रही हैं, हमारे श्रोताओं को काफ़ी आनंद की अनुभूति हो रही है, तो क्यों ना उनके लिए कुछ आप भजन की कुछ पंक्तियाँ या किसी गीत की कुछ पंक्तियाँ यदि गुनगुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें।
0: मैं बच्चों के लिए एक गीत सुना रही हूँ।

0: में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच यह ऐतिहासिक समझौता हुआ था। साथियों, शिमला समझौते की खास बात यह थी कि द्विपक्षीयता जो आज भी भारतीय विदेश नीति का मूल आधार मानी जाती है, इसके तहत दोनों देशों ने सहमति जताई थी भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समेत जितने भी विवाद हैं उन्हें आपस में बैठकर सुलझाया जाएगा और किसी अन्य तीसरे देश की उसमें साझेदारी नहीं होगी।
1: जी, और इसी समझौते के तहत पुरानी युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी कि LOC रूप में नया नाम और पहचान मिली। आज की युवा पीढ़ी के लिए शिमला समझौता सिर्फ एक ऐतिहासिक हस्ताक्षर नहीं बल्कि एक सबक है। यह हमें सिखाता है कि युद्ध के दौरान मैदान में जीत जितनी ज़्यादा ज़रूरी है, टेबल पर कूटनीति की धार उतनी ही पैनी होनी चाहिए।
0: तो बिल्कुल साथियों, आज हम 2 जुलाई को शिमला समझौता की वर्षगांठ मना रहे हैं और हमारे भारतीय सैनिकों को उनके बलिदान के लिए और उनके सम्मान के प्रति, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

घूमने के लिए तो वे हवाई मार्ग द्वारा जा सकते हैं। नागालैंड का मुख्य हवाई अड्डा दीमापुर हवाई अड्डा है। आप दिल्ली, कोलकाता या गुवाहाटी से यहाँ के लिए उड़ान ले सकते हैं। साथ ही यदि आप ट्रेन द्वारा जाना चाहते हैं तो दीमापुर के निकट प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो गुवाहाटी और देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, और आप सड़क मार्ग का भी चयन कर सकते हैं। तो हमारे जो श्रोता वहाँ पर घूमने जाना चाहते हैं, वहाँ के लोग जितने मेहमान नवाज हैं उतने ही वे अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो पुरानी उनकी संस्कृति है, वहाँ का पहनावा, खान पान सबको लेकर वो साथ में चलते हैं। और खोनुमा हमें सिखाता है कि हम अपनी प्रगति के साथ साथ प्रकृति को कैसे बचा सकते हैं। प्रगति का होना जितना ज़रूरी है,

जाने के लिए तो वे हवाई मार्ग द्वारा जा सकते हैं। नागालैंड का मुख्य हवाई अड्डा दीमापुर हवाई अड्डा है। आप दिल्ली, कोलकाता या गुवाहाटी से यहाँ के लिए उड़ान ले सकते हैं। साथ ही यदि आप ट्रेन द्वारा जाना चाहते हैं तो दीमापुर के निकट प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो गुवाहाटी और देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, और आप सड़क मार्ग का भी

0: मेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी, वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: साथियों, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक योजना, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगले 5 वर्ष में देश की शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को 12 महीने की व्यावसायिक इंटर्नशिप और कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है।
2: योजना के प्रमुख लाभ और वित्तीय सहायता की यदि हम बात करें तो चयनित इंटर्न को प्रति माह 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है और इंटर्नशिप ज्वाइन करने पर 6,000 रुपये का ज्वाइनिंग ग्रांट मिलता है।
1: जी बिल्कुल साथियों, इसकी पात्रता एवं मापदंड की हम बात करें तो आवेदक की आयु 18 से 25 वर्ष एवं शैक्षिक योग्यता 10वीं 12वीं ITI स्नातक स्नातकोत्तर होना चाहिए। ऑनलाइन या डिटेल्स लर्निंग के पढ़ाई करने वाले छात्र भी इसमें आवेदन कर सकते हैं।
2: जी, और परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और आपको प्रशिक्षण पूरा होने पर देश की प्रमुख जो कंपनियां हैं उनके द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, इसमें आप आवेदन करने के लिए इसकी आधिकारिक पोर्टल PM इंटर्नशिप पोर्टल पर जाइए और इसमें अपना आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपनी इंटर्नशिप करके अपना रोजगार और व्यवसाय प्राप्त कर सकते हैं।
2: जयेश, हम बता दें कि एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपकी प्रोफाइल कंपनी की आवश्यकताओं से मेल खाती है तो आपको कंपनी द्वारा शॉर्टलिस्ट भी किया जाएगा और पोर्टल पर ही आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, यह जो योजना है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है और अब समय की देखते हुए हम इस युववाणी कार्यक्रम से, मैं आपका रेडियो साथी जयेश राठौर
2: जी और मैं अदिति शर्मा आपसे विदा लेते हैं।
1: नमस्कार,
2: मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

प्राउड टू बी एन इंडियन फिल्म सुनिए बाबुल सुप्रियो और सुनिधि चौहान को। गीत रचना जय वर्मा की है और संगीत डब्बू मलिक का।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बीबीजी रामजी योजना पर अगले 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयपुर में 2 दिन के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का समापन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एआई को सुशासन की अनिवार्य जरूरत बताया। राज्य में मॉनसून

तापमान में टोंक, जयपुर और अलवर में सक्रिय है। भरतपुर के बयाना में आज तेज बरसात हुई, वहीं शहर के अलावा कई क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई। प्रतापगढ़ में 4 इंच से ज्यादा बारिश के समाचार हैं। चित्तौड़गढ़ में भी मूसलाधार बारिश हुई। दौसा में तेज बरसात से कई इलाकों में पानी भर गया। अलवर शहर और आसपास के इलाकों में भी बरसात हुई। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादलों की आवाजाही रही। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मॉनसून के आगामी 2-3 दिनों में राज्य के कुछ और भागों में आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। उन्होंने बताया कि आज उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग

तापमान में टोंक, जयपुर और अलवर में सक्रिय है। भरतपुर के बयाना में आज तेज बरसात हुई, वहीं शहर के अलावा कई क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई। प्रतापगढ़ में 4 इंच से ज्यादा बारिश के समाचार हैं। चित्तौड़गढ़ में भी मूसलाधार बारिश हुई। दौसा में तेज बरसात से कई इलाकों में पानी भर गया। अलवर शहर और आसपास के इलाकों में भी बरसात हुई। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादलों की आवाजाही रही। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मॉनसून के आगामी 2-3 दिनों में राज्य के कुछ और भागों में आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। उन्होंने बताया कि आज उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग की तैयारियां तेज कर दी हैं। आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक में जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान, नियंत्रण कक्षों की स्थापना और आपातकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिला स्तर पर 24 घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के 86,000 से अधिक किसानों को 23वीं किस्त की राशि का लाभ मिला है। किसानों के बैंक खातों में ये राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी भी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फलौदी दुर्ग में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आमजन ने योगाभ्यास किया। जिले भर में आयोजित कार्यक्रमों में 1,21,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत जिले के पात्र आवेदकों के चयन के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। योजना के तहत 583 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इनमें से 519 वरिष्ठ नागरिक रेल मार्ग से और 64 हवाई मार्ग से धार्मिक यात्रा करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के

0: विभाग री प्राध्यापक विशेष शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 8 दिसंबर न फैला। इनके अलावा सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 27 दिसंबर न ली चावेला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE साल 2026 री 12वीं कक्षा री सप्लीमेंट्री परीक्षा सारू अर्जियां लेवणो शुरू कर दीनो है। बोर्ड रे मुजब रेगुलर और प्राइवेट उम्मीदवार सारू अर्जियां दाखिल करण और फीस जमा करावण रो काम 30 जून नु शुरू फेक्यो है। संबद्ध स्कूलां ने 8 जुलाई ताई परीक्षा संगम पोर्टल रे जरिए अर्जियां बोर्ड माय जमा करावणी फैला। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज बतायो कि मुख्य परीक्षा माय सप्लीमेंट्री आवण वाला यकीनी एक विषय माय अंक सुधार सारू विद्यार्थी आ परीक्षा दे सकेला। सप्लीमेंट्री परीक्षा 28 जुलाई हैला। आखिर माय खास समाचार एकर फेरू सुन ले राव। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो VBG राम जी माथे आवता 5 साल माय 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करया चावेला। जयपुर माय 2 दिन रो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन पूरो फियो। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह AI ने सुशासन री जरूरत बताया। राज्य माय चौमासा री बिरखा सरूफी। आवता 24 घंटा माय कई ठोणा भारी बारिश रा आसार। और प्रदेश माय ओ महीनो एंटी डेंगू महरा तौरू मनायो चावेला। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो चावेला। नमस्कार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPL Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM।
4: संकट के

0: मानसून में फलदार वृक्षा का रोपण एवं वहाँ देखभाल की आधुनिक तकनीकी का ही
1: बिल्कुल निकिता जी। और आपने बताया कि जैसे हमारे मानसून में फलदार जो वृक्ष तो वहाँ की रोपाई छे देखभाल कैसे करें, और फिर आपने जो कृष्ण भाई बन छे वो अभी जो फल पेड़दार ये फलदार जो पेड़ छे वहाँ की लगावा की तैयारियां कर रहा है ना, और बहुत सारा ने फली सुई तैयारियां कर रखी छे, तो आपन ई टर्म पर फलदार जो वृक्ष रोपाई कर रहा चाहे या तो वहाँ की जरूर अपनी संबंध में आज अपनी जरूर फोन कर लेनी चाहिए। और आज आपने जो विशेषज्ञ छे ये छे डॉक्टर रवि यादव, अनुसंधान अध्यता राजकीय उद्यान के मान के महाविद्यालय झालावाड़। तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपको घणो घणो स्वागत है साहब, राम राम साहब।
2: राम राम साहब।
1: और डॉक्टर साहब जैसे कि एक आज को जो आपने विषय छे
2: जी
1: वो छे आपने का जो मानसून में जो फलदार वृक्ष छे तो वहाँ की अबाण वर्तमान जो समय चाह रहे हो तो इम अबाण कई कई काम करवा की आवश्यकता छे या बातों पर अपन जानकारी लेंगे, पर एक श्रोता जे अपने फोन कॉल से जुड़े हुए छे
2: जी।

0: और जो आपका रेड लेडी है, ये बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो होता है पपीते में। आप यहाँ पे अमरूद का उत्पादन भी बहुत अच्छा है, कई तहसीलों में बहुत अच्छा अमरूद चलता है, असनावर, अकलेरा की
1: जी
0: साइड, कानपुर साइड में आपका चीकू वगैरह है, तो ये आप चीकू लगा सकते हो। आपका अब सीताफल जो यहाँ पे एमपी पास में है, तो सीताफल एमपी में है, जीरापुरा अगर मैं इधर राजगढ़ तहसील में, तो आपके यहाँ भी बहुत अच्छे से चलता है सीताफल, तो आप सीताफल लगा सकते हैं, जिसकी बालानगर है, अरकसान, कई वेराइटियाँ बहुत अच्छी है, सीताफल लगाइए, चीकू लगा सकते हैं आप, केला और आंवला भी यहाँ पे अच्छे से होता है,
1: जी
0: बेलपत्र भी। तो ये सभी ऐसे फलदार वृक्ष हैं जिनको हम हाड़ोती में भी, और स्पेशली अगर बात करें तो झालावाड़ में भी लगा सकते हैं। संतरा ही संतरा नहीं है, सब कुछ लगाना चाहिए हमें।
1: बिल्कुल। तो आपने जैसे बताया कि अपनी हर प्रकार का जो फल छे,
0: जी
1: और वैसे भी अब डॉक्टर साहब आपने देखी कि आपने जो झालावाड़ जिलो छे, तो इनमें अब संतरा की ओर जो रुझान छे वो कम हो रही हो
0: कम
1: छे,
0: हो रहा
1: है
0: है।
1: ना? तो इनके पास काई मानव छे आपको?
0: सबसे मुख्य जो वैज्ञानिक जो कारण मैं तो मानता हूँ, जो मैंने 8 साल में यहाँ देखा है,
1: जी
0: वो है कि जलवायु का जो परिवर्तन है, कि पिछले काफ़ी सालों से यहाँ का जो वार्षिक औसत जो वर्षा थी वो कम होती जा रही है, और आप देखना कि कुछ सालों में हमारे पश्चिमी राजस्थान में तो बारिश बहुत ज़्यादा होने लग गई,
1: जी
0: और हमारे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जो हाड़ौती का जो पूरा एरिया है इसमें कम हो गई। वो भी एक कारण होता है किसी भी फल वृक्ष में समय पे फूल आने और, क्यों उचित तापमान उसको नहीं मिल पाता, वो ह्यूमिडिटी उसको

0: जैसे अमरूद वगैरह हो गया, पपीता वगैरह हो गया, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे अभी के हिसाब से कौन सा बीज वगैरह, वैरायटी वगैरह।
1: अच्छा
0: तो जी
1: अच्छा
0: बिल्कुल,
1: अमरूद और दूसरा क्या पूछा इन्होंने?
0: पपीता।
1: पपीता। तो देखिए, अमरूद की तो हमारे L49 वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएगी, केवीके
0: जी
1: वगैरह में, कॉलेज में, नर्सरी।
2: प्रस्तुत किया गया है।

0: संकट के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: अभी आप सुन

0: कई सारी जनहानि बच जाती है।
1: अच्छा, ये बड़ोदिया सर, जैसे आपने बताया कि ट्रांसफार्मर की बात चल रही है, तो उसके आसपास भी एक सुरक्षा को लेकर के कुछ अभी रखने की आवश्यकता है? किसान है, बहुत से ट्रांसफार्मर ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर उसके आसपास ही वो खेत होते हैं, तो फिर जैसे मान लो वो खेती कर रहे हैं या वहीं जो फसल है वो उसके पास में वो देते हैं, तो
0: हाँ
1: इसके थोड़ा
0: हाँ
1: जगह रखने की आवश्यकता है, क्या करना
0: हाँ
1: चाहिए
0: ये
1: हमें?
0: आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अक्सर हम देखते हैं कि किसान भाई उसको कई बार तो ऐसा देखते हैं कि वो चैनल वो ऊपर ना रख के नीचे ज़मीन पर रख देते हैं,
1: हाँ हाँ
0: वो बहुत
1: हाँ
0: खतरनाक होता है।
1: जी,
0: तो उससे क्या है कि हमारे मवेशी वहाँ से गुजरते हैं, हम खुद भी, हमारे परिवार के कोई भी सदस्य वहाँ गुजरे रात में या भी जाते हैं, तो कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है।
1: अच्छा, बहुत सारे किसानों का एक और देखने में आता है कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको उतार करके अपने घरों तक ले आते हैं, वो ऐसे जैसे मान लो दूर रहता है या उसको तो एक अच्छा रहता है कि ये चीज़ें
0: नहीं
1: हैं।
0: नहीं नहीं ये सही बात नहीं है।
1: हाँ,
0: ट्रांसफार्मर को बिना, हमारा जो विद्युत विभाग है उसके बिना उसकी छेड़खानी नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: कई
1: बिल्कुल
0: बार एक चीज़ और है कि

0: स्टे वायर है, खम्बा है, उसके ना बांधें
1: जी,
0: है ना। और एक कभी क्या करते हैं कि जो भी कूड़ा कचरा होता है ना, उसको बिजली का जो ट्रांसफॉर्मर है वहां पे डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे भी करंट आने का डर है, क्योंकि हमारे जो तार हैं उसके टच हो जाते हैं उस कचरे के थ्रू, जब गीला होता है तो उससे भी करंट वहाँ आसपास में करंट फैल जाता है, वहाँ जब हमारे मवेशी जाते हैं, कोई भी जाते हैं, तो कोई दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है, सलाह है कि वो इस तरह इस

0: हम सब के लिए, शहर वालों के लिए भी, गांव वालों के लिए भी, कि हमारी एक इलेक्ट्रिक सर्किट अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है जिसको ईएलसी भी बोलते हैं, ये हमारे घरों में लगाएं, जिसके भी बिजली का कनेक्शन है वो ईएलसीबी जरूर लगाएं
1: जी।
0: ये इतनी महत्वपूर्ण है ईएलसीबी कि ये हमारा जो, जैसे ही बिजली का करंट लीकेज करंट होता है, जैसे कहीं भी जब कोई टच होता है, कोई भी व्यक्ति का हाथ टच हो जाता है तो उसमें करंट फ्लो होता है, तो 0.1 सेकंड में वो उसको ब्रेक कर देगी।
1: अच्छा,
0: यानी कोई भी बड़ी दुर्घटना होने से वो बच सकती है
1: जी, जी।
0: तो सभी घरेलू जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको मेरी यही सलाह है कि वो हमारे घर में ईएलसीबी जरूर लगाएं। इसकी ज्यादा कीमत नहीं होती, ये 600 से 1000 रुपए के आसपास का होता है मात्र, लेकिन इसको जरूर लगाएं।
1: बिल्कुल, ये बात है,
0: अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जिसको बोलते हैं।
1: हाँ,
0: एमसीसी भी तो सब लगाते हैं बट अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है।
1: अच्छा, वो भी लगाना,
0: ये बहुत बहुत ही सेफ्टी पॉइंट से बहुत जरूरी है।
1: अच्छा,
0: लगाना चाहिए।
1: अच्छा, आजकल तो जैसे अभी तो स्मार्ट मीटर चल गए, बाकी पहले एक जो फ्यूज तार हुआ करता था,

0: टूट गया या कोई इमरजेंसी बात करनी है तो बिजली को बंद कराना है, तो हमारे टोल फ्री नंबर है, उस पर आप सीधा फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है, एक तो पूरा राजस्थान का है, जो 1-8, आप नोट कर लें इस चीज़
1: जी
0: को,
1: जी जी
0: 1-800-1806507,
1: जी
0: ये हमारे एक टोल फ्री नंबर है। इसके
1: जी
0: अलावा हमारा जैसे झालावाड़ है, तो झालावाड़ के लिए हमने एक कॉल सेंटर बना रखा है, एक एम्बुलेंस नंबर है आपके जो 108 पे आप कर सकते हैं।
1: जी जी
0: एक टोल फ्री नंबर है हमारा, हेल्पलाइन है 1914 है, जो 24 घंटे चालू रहता है, इस पे आप कर सकते हैं,
1: जी
0: फ़ोन कर सकते हैं इस पे, तो
1: तो
0: आपको आपकी जो सूचना है हमारे तक पहुंच जाएगी वो किसी भी लाइन।
1: एक कार्यक्रम के अंत में चलते चलते जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं, तो उनको एक आपकी ओर से सलाह के तौर पे क्या करना चाहेंगे अभी अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से?
0: मेरा सभी किसान भाइयों से यही सलाह है मेरी तरफ से कि आप बिजली इस मानसून के टाइम पे, बरसात के टाइम पे विशेष ध्यान रखें। सबसे जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। हमारे जीवन को बचाना है, हमारे परिवार

0: और सिकंदर भाई कहाँ है?
1: वो तो मैं आप ही से पूछने वाली थी, अभी तक नहीं लौटी है दफ्तर से।
0: दफ्तर से? मगर दफ्तर से तो वो 3 बजे ही निकल गए थे, छुट्टी लेकर नरेश बेटे के पांव पर इमाम दस्ते की।
1: फिर वही इमाम दस्ते की मूसली। अरे भैया हमारे यहाँ तो इमाम दस्ता ही नहीं है, वो मरी मिक्सी है।
0: मिक्सी? इमाम दस्ता?
1: पर भट भैया बात क्या है, कुछ कुछ बताओ तो भट भैया।
0: अब क्या कहूँ भाभी, आज मिस्टर सिकंदर जब फिर देर से पहुंचे तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। एक हाथ में लंच बॉक्स और दूसरे में चप्पल।
1: चप्पल?
0: जी हाँ, और वो भी टूटी हुई। बुरी तरह हांफते हुए घबराए घबराए कमरे में दाखिल हुए।
2: शुक्र है सुपरिंटेंडेंट साहब नहीं है सीट पर, शायद आए भी ना अभी तक। फिर तो झट से 9:55 की हाजिरी लगा दूं। आए हैं, मर गए। मेरे नाम के आगे तो इतना बड़ा लाल चौराहा यानी कि क्रॉस लगा है।
3: भी सर। तो आज भी आप पूरे 1 घंटे लेट आए हैं मिस्टर सिकंदर खुद तक विलंबित।
2: सर वो
3: देखा मिस्टर भट्ट,
0: विलंबित जो ठहरे सुपरिंटेंडेंट साहब।
3: तो श्रीमान विलंबित जी,
2: जी
3: अब आज के दिन आपके विलंब का क्या कारण है?
2: जी सुपरिंटेंडेंट साहब वो बात ये है,
3: बोलो बोलो, मगर ध्यान रहे पिछले किसी बहाने को इतनी जल्दी रिपीट मत कर जाना।
2: जी जी मैं बेहद शर्मिंदा हूँ सुपरिंटेंडेंट साहब।
3: अरे मगर क्यों, अभी तक तुमने ऐसा कोई बहाना रिपीट तो किया नहीं।
2: जी वो मैं समझा नहीं सर।
3: मैं तुम्हें वो सिलसिला याद दिला देता हूँ जिस पर तुम रोजाना बाकायदगी के साथ अमल करते आ रहे हैं।
2: कैसा कैसा सिलसिला?
3: अरे भाई बहानों का सिलसिला विलंबित जी, कल आप लेट इसलिए आए थे कि आपके पड़ोस में एक बुढ़िया की मौत हो गई।
2: जी हाँ जी हाँ।
3: और उसे कंधा देने वाले चौथे व्यक्ति सिर्फ आप ही थे।
2: जी हाँ।
3: क्योंकि बाकी आसपास के लोग सब तब तक अपने दफ्तर जा चुके।
2: जी हाँ जी हाँ, ये तो मेरा सामाजिक और नैतिक कर्तव्य था सर।
3: परसों आप इसलिए लेट थे कि आपने कुछ ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया अपने ससुर जी की पहली बरसी।
2: मिस्टर भट्ट माइंड योर ओन बिजनेस।
0: मगर सिकंदर भाई, अपने ससुर की पहली बरसी और तुमने खुद मनाई, तुम्हारे तो शायद 2-2 साले हैं।
2: मगर हाँ वो दोनों साले वो कनाडा गए हुए हैं, वहाँ श्राद्ध खाने के लिए कौन सा पंडित आएगा।
3: ओ आई सी।
2: जी सुपरिंटेंडेंट साहब, ऐसे में क्या मुझे वो धार्मिक कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहिए था?
0: जी हाँ सुपरिंटेंडेंट साहब, आखिर ससुर भी तो पिता समान ही होता है, जैसे पिता का श्राद्ध वैसे ही ससुर का, पत्नी का पिता अपना पिता।
2: आप चुप रहिए मिस्टर भट्ट, देख लिया सुपरिंटेंडेंट साहब किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग मेरी धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य परायणता का। क्या इनके यहाँ आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में कभी कोई नहीं मरा या कभी कोई नहीं मरेगा कब?
3: छी छी छी, इतने ओछे और घटिया शब्दों पर उतर आए तुम मिस्टर सिकंदर। एक तो आप लेट आए।
2: तो इन लोगों को क्यों दर्द होता है सर, क्रॉस लगाए मेरे नाम के आगे, डांटने का हर सारा आपको है, सेक्शन इंचार्ज को है, ये क्यों टकराते हैं मेरे लेट आने पर? दे शुड सी देयर ओन वर्क, अपना काम देखें।
0: हमें अपने काम के अलावा आपका काम भी देखना पड़ता है मिस्टर सिकंदर जब आप सीट पर नहीं होते।
2: ऐसी कौन सी आफत आ रही

0: बुलवाएं? घर वालों का भी कोई फर्ज होता है।
1: नहीं नहीं भैया, यहाँ घरों में तो हमें ही उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है।
0: कभी तो पकड़ में आएंगे सिकंदर भाई, बुरा तो मानेंगे मगर राह रास्ते पर तो आ जाएंगे।
2: नगर लागी है पानी घटवा ना जाए।

0: बीवी।
1: अरे क्या कह रहे हो सिकंदर भाई, कल शाम तक तो भाभी बिल्कुल ठीक ठाक थी, मैंने खुद देखा। अरे भाई एकदम क्या हो गया?
0: एकदम से वो उल्टिया सर, उल्टिया सर, उल्टियों पर उल्टिया सर, दम घुटने लगा, फिर उल्टिया, उल्टियों पर उल्टिया सर, मैं घबरा गया, टैक्सी पकड़ी और फौरन इमरजेंसी वार्ड में ले गया। मगर जब तक सर,
1: तब तक क्या क्या हुआ, क्या हुआ तब तक? हाँ बोलो भाई
0: सर।
1: हाँ बोलो।
0: उल्टियां बंद हो चुकी थी और डॉक्टर ने अच्छी तरह मुआयना करके बताया सर, सर के वो,
1: हाँ बोल भाई बोल,
0: वो पाँव भारी है।
1: पाँव भारी है यानी कि नए बच्चे की मां बनने वाली?
0: आपको कोई तकलीफ है?
2: ऐसे शट अप
0: जी,
2: यू लायर, झूठे बहाने बात मत कर।
0: सुपरिटेंडेंट साहब आप मुझे गालियां दे रहे हैं, ये ऑफिस है सर।
2: अरे मेरा बस चले तो गोली से भी उड़ा दूं तुम जैसे झूठे मक्कारों। वाह क्या बहाना बनाया है, बीवी का पांव भारी है और इससे इट इज इम्पॉसिबल।
1: माफ कीजिए सर, मिस्टर सिकंदर भला इसमें भी क्या झूठ बोल सकते हैं? सर सच्चाई तो कुछ महीने बाद सामने आ ही जाएगी सर।
2: सच्चाई? अरे ऐसे झूठे बहाने बाजों के कारण तो सच्चे लोगों पर से भी विश्वास खत्म हो गया। सच्चाई जानना चाहते हो तो ये देखो, ये रही सच्चाई।
1: ये कैसा कागज है सर,
2: तुम ही पढ़कर बताओ मिस्टर सिकंदर।
0: यस सर। अरे सर ये तो मेरे स्पेशल इंक्रीमेंट का ऑर्डर है सर।
2: ऑर्डर नहीं, अभी ड्राफ्ट है, खुद मैंने तैयार किया।
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।
1: स्पेशल इंक्रीमेंट का?
0: यस
1: सर। कौन हकदार होता है स्पेशल इंक्रीमेंट का?
2: जो कर्मचारी अपने और सारे देश की भलाई और खुशहाली का राज समझते हैं और ठीक समय पर सही कदम उठाते हैं।
1: मिस्टर सिकंदर इतने समझदार कब से हो गए सर?
2: ये भी जानना चाहते हो? ये रहा दूसरा कागज, बताओ सिकंदर क्या है ये कागज? बोलो।
0: ये तो मेरा फैमिली प्लानिंग यानी सर वो ऑपरेशन कराने का सर्टिफिकेट।
2: छी छी सिकंदर, तुम्हारे बहानों का सिलसिला इतने घिनौने झूठ तक पहुंच सकता है?
0: बस सर मेरी बात तो सुनिए सर, मैं कहता हूँ मेरी बात सुनिए।
2: आई विल सी दैट यू आर
0: डिसमिस्ड। मैं अगर नौकरी छूट गई साहब कहीं का नहीं रहूंगा। मेरा गले में बंदा था, ये बंदा

प्यार किया है प्यार करेंगे, फिल्म सुनिए शब्बीर कुमार, कविता कृष्णमूर्ति, एस एच बिहारी की गीत रचना है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इससे संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल

0: भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सचेता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है।

दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

0: जान जान।
1: मिशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौड़वाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।

0: इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।